बैठे। प्योर हार्ट शोज पाथ टू गुडनेस, प्योर हार्ट कन्फर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर ऑन अर्थ। द प्योर हार्ट अलोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉरगेट दिस गुड वर्ड।